प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरे ने अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेविया जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निबहे खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ता

एका माई जुगत में आई धनजेले प्रमाण संसारी भंडारी कलाए दीपाण जे वा तिस भावा समा चलावा जिगो वा प्रमाण ओह वेखा ऊंडा नजर न आवै

आजाद हैं चरपिछंदवा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार शावल सांत्वा प्रसाद नमो नरकनासे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाव भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न

सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो नरेन्द्रे नमो अंधकारे नमो ते तेजे नमो बृंदा बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंताम संशात रूपे नमो परम तत्तंगा तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो शांत रूपे नमो नरेन्द्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो वांग वंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे दर्भंगी दर्काले अनंगी अकामे एक श्री शांत अज अल अब अब अबू अजू अनास कास गांजा पंजा लख पख

राम भगत ने किनी मन रे कौन को मत तैलिनी परदारा निंदया रस रचियो राम भगत ने किनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो ते नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दिना बिरथाया पबंधया नाहर भजयो न गुरजन सेवयो नहीं उपजो कछ ज्ञाना कट ही महे निरंजन तेरे तै खोजत उदयना बहुत जन्म परमत तै हारेयो अस्थिर मत नहीं पाई

अस्थिर मत नहीं पाई, मानस देह पाए पद हर पज, नानक बात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: sermon. Do you know only sermon?
1: Yeah.
0: Just do that.
1: Okay, fine. Okay. आप शब्द का सकते हैं।